0: उन्हें नया विनर 17 है। आपने SMS की पैक अवेलेबल दी ना ने?
1: ओ मैसेजेस की पैक अवेलेबल थी ना वहाँ तू सिर्फ मैसेज का डाला थी ना है वो वहाँ ने आदु मे खाओ द हम उत्ता किया फ़ोन ची वेला वक दिन ना फिट ने इधर अभी किया ना खाओ द किया लेकिन ओगोला ना लोट वैडक के कुतो माय मे अवेलेबल थी ने पाने दुरे फैक्टरे आने हितु ना मटर पाने दुरे अभी वहाँ गे नहीं ना तुशुर मुखाक द मे वांगो किया हालत ही ना दस सुन मुखा द किया ने
0: तमंत दहाड़क तीनों वांगू कैमती वांगू तोरा क्या ना बोला
1: कैमती वांगू का नातरो है ना बोलो वांग
0: मैं तो दहाड़ वांगू
1: अभी क्या ना हम बोल मिलने
0: राइट तब कौन दिसे मिस कर लेंगे
1: हेलो खेला तेरे तो वां गुड मॉर्निंग तीन अभी तीन तो वां मातले दिल्ली ने तो वाई वासे जिक दाला दिए ने दिल्ली न्याव वाते कतु कर गान ना दें थैपल कार्य आले का दस उनमें वेला वापस सात दिट म आगे नहीं ना गिनी का थे ना थैपल कार्य आले तो वाई अभी वहाँ गे नहीं ने इतने इन्नो उड़े देने महत्म आए वागे में चांदनी मिस इन्नो वा रिफ्का मिस इन्नो वा संगीत अमे हेमो मैं कतु कर गाने के लिए लस्सन सिंधु कहाँ
0: ना अरे मैं तो वाई ये लस्सन म लस्सन सिंधु आने

0: फी मनु तुनाई दशमा पहा अनु तुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सेबे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाब सवस हादराय
2: विलाब ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबन कोटी अटे एनएलबी दानडे तहने लुतराईयन रटे संवर्धने त तेवंत शक्तियक वेमिन ओबा दिनवा रटा दिनवत दाननि दहने बिलदीगेन ओबा कोटीपतिय कुवन